0: And that together.
1: That's okay. Must. Okay.
0: Why is lassi so popular here?
1: ये लाहौर का कल्चर है ये नाश्ता जो मर्जी करे उससे बाद लस्सी पीनी है पार्टीशन से पहले इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन में पहले पीते आ रहे हैं
0: राइट
1: पंजाबी
0: राइट
1: इंडिया पाकिस्तान अंग्रेज दौर ब्रिटिश दौर
2: एंड द प्राइस फॉर गेटिंग दिस होस्टिंग जॉब वेल मेकिंग लस्सीज फॉर द क्रू सर्व्ड बाय योर्स ट्रू
0: चीयर्स

Nasıl sordu? Sordu, sordu ben kuş karım olacak. गाड़ी को पूरा चेक किया प्रॉपर, अब हम शुरू कर रहे हैं ले की तरफ। अभी हम दो ट्रक को लेके जा रहे हैं ले को, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है आपस में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा।

अभी हम लोग अटल टनल के अंदर हैं। अटल टनल की स्पेशलिटी ये वर्ल्ड की हाईएस्ट अल्टीट्यूड और लॉन्गेस्ट टनल है। ये 9 किलोमीटर की टनल है और 3048 मीटर अल्टीट्यूड इसका सी लेवल से है। इससे पहले अभी 3 साल होने को आए अटल टनल बनी, उससे पहले हमें रोहतांग से होकर आना पड़ता था और रोहतांग से आने में 6 घंटे एक्स्ट्रा लगता था। इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई उस कंडीशंस में रोहतांग टॉप को क्रॉस करना, वहाँ पे स्नोफॉल हो जाता था, आर्मी के ट्रक्स रुक जाते थे, प्राइवेट गाड़ियाँ हमारी रुक जाती थी और वहाँ पे बहुत से इंसिडेंट होते थे।

0: अभी इससे पहले जब रोड ठीक था तो हम ये वाला जो रूट है इसको बहुत जल्दी कवर करते थे। अभी क्या है कि दिन के टाइम जाना पड़ रहा है क्योंकि रोड्स जो है बहुत जगह से टूट गया हुआ है।
1: आप नीचे देख सकते हैं कितना पत्थर है, ऊपर नीचे स्टोन्स एवरीवेयर। आगे भी है एक छोटा सा डिस्ट्रक्शन पॉइंट, आगे भी है पर इतना बड़ा तो नहीं है, पर है वहाँ पे भी है। बहुत ज़बरदस्त है भाई, रोड की हालत बहुत ख़राब है। माय गॉड,

ये जो डिजास्टर आया इसके बाद की जगह जगह से रोड टूट गया हुआ है। पुराने वाला रोड तो चला गया हुआ है, नया रोड जो काटा हुआ है रोड तो बना दिया है उसको काट के, मगर उसमें लैंडस्लाइड्स आने का बहुत ज़्यादा चांस है। इतना मुश्किल से गाड़ी निकल रहा है कि कोई बहुत ही मुश्किल है। सामान इम्पोर्टेंट है इसलिए हमें आना पड़ रहा है, बिटुमिन लोड है क्योंकि रोड बनाने के लिए बिटुमिन चाहिए वहाँ पे।

बचपन से ही मेरे ब्लड में ही है ये ट्रकिंग लाइन। तीसरी जनरेशन है मेरी, पहले मेरे दादाजी ने ये काम किया, उसके बाद मेरे पिताजी ने किया। तो मैं रोड की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती थी जब मैं छोटा था, तो मैं एक दो बार अपने ड्राइवर्स के साथ गया सामान पहुंचाने के लिए, ऐसे ही बीच में घूमने के पर्पज़ से भी। तब बिना पैसे खर्च किए हुए नई नई जगह देखने को है।

0: हम अब बारलाचा टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। मनाली हाईवे में ये वाला जो टॉप है बहुत डेंजरस टॉप्स में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेदर कंडीशन जो है बिल्कुल चेंज होती रहती है। अभी थोड़ी देर पहले वेदर कंडीशंस बहुत अच्छी थी, अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अभी ये बारिश जो है इससे रोड और भी ज़्यादा डेंजरस होने की पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह नहीं है, लैंडस्लाइड होने का खतरा बढ़ जाएगा।
1: क्या है, ट्रकिंग लाइन में बहुत से आदमियों की यहाँ पे डेथ हो गई है।
0: अभी हम लोग क्या है हाई अल्टीट्यूड की तरफ बहुत ज़्यादा चढ़ाई में बहुत ज़्यादा ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी को भी टेम्परेचर वगैरह चेक करना पड़ता है। अगर हम इसको नहीं देखेंगे तो ओवर हीट होने के चांसेस है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कम है। चढ़ाई भी ज़्यादा है, गाड़ी का इतना पावर भी ज़्यादा लग रहा है, हैवी लोड है तो गाड़ी की पावर उतनी ज़्यादा, गाड़ी को पुश करने के लिए उतना ज़्यादा जोर मांग रहा है, और जिसके लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, गाड़ी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अभी टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया है, इससे गाड़ी को भी बहुत मुश्किल आता है चढ़ाई में जाने के लिए।
1: एवरी ईयर ये रेशो है लगभग 20-25 पीपल्स जो हाई अल्टीट्यूड या इस वजह से जो डेथ होती है इस रोड पे, उस कंडीशंस में भी सांस फूलना शुरू होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई और ये हो गया।
0: ये देखो सामने यहाँ पे लिखा है 4850 मीटर इसका अल्टीट्यूड है सी लेवल से।

जब भी हम इस रोड से जाते हैं तो प्रे करते हैं, सभी के लिए प्रे की, सभी ट्रकर के लिए कर। ये जो मौसम की कंडीशन है, ये बहुत साल बाद इस बार हमें काम करना बहुत मुश्किल हो गया। ये लग रहा है कि ये सीज़न बहुत छोटा रहेगा, अभी विंटर स्टार्ट हो जाएगी, यानी अगर सितंबर के बाद इस रोड पे चलना बहुत टफ हो जाएगा। तो इन सब के लिए सीज़न अच्छा सा गुजरे, सभी के लिए मैंने प्रे की, सभी ट्रकिंग लाइन का, सभी लोग अच्छे से गुजरें कि सभी कुछ अच्छे से हो जाए।

0: हम लोग जो है अभी 22 लूप को 22 कैंची बोलते हैं, 22 मोड़। एक तो ये लोड बहुत है, मतलब चढ़ाई है पूरा। 22 मोड के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि कितनी वो कैसे बिल्कुल डाउन से नदी साइड से शुरू होता है और कहाँ टॉप पे। ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ज़्यादा है। ऑक्सीजन की नीड जो है सिर्फ ड्राइवर्स को ही अकेले नहीं है, जो गाड़ी है हमारी उसको भी ऑक्सीजन की नीड है, क्योंकि कुछ भी जलाने के लिए, गाड़ी को चलने के लिए तो ऑक्सीजन तो चाहिए। गाड़ी में लोड है, ऊपर से इतनी चढ़ाई है, तो गाड़ी में भी प्रॉब्लम होती है। और एक प्रॉब्लम का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इस ओवरहीटिंग। अभी जो दूसरी गाड़ी में मेरा ड्राइवर है वो माही है, वो मेरे पास लगभग 3 सालों से गाड़ी चला रहा है।
1: ये रोड के बारे में सबसे खतरनाक भाई जी, एक तो इसमें चढ़ाई बहुत है और ऑक्सीजन की वजह से गाड़ी एक्सीलेटर रनिंग नहीं पकड़ती है, कई गाड़ियां जो है कि खड़ी हो जाती है चढ़ाइयों पे।
2: यहीं से 15-20 किलोमीटर आगे मेरे एक दोस्त था, तो वो ट्रक वो खाना बना रहे थे गाड़ी में बैठ के, पीछे से गाड़ी वाला आया, थोड़ा नींद में था और उसकी गाड़ी उसके पीछे डाले में जाके बजी और उनकी डेथ हो गई थी। कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, कई बार मौत के मुंह से निकले हैं। ये तो लाइन ही ऐसी है, मशीनरी है।
0: हम लोगों ने बिटुमिन कैरी किया हुआ है, पीछे जो गाड़ी उसमें इमल्शन कैरी किया हुआ है, और दोनों का जो है ना लिक्विड टाइप में है, तो गाड़ी बहुत टिल्ट करता है 22 लूप्स में। ड्रम कभी भी नीचे गिर गया, एक दूसरे के ऊपर उलट पलट गया, तो गाड़ी को कुछ भी नुकसान पहुंच सकता है। जिस साइड को वेट होगा हैवी लोड का, गाड़ी उसी साइड को जाएगी। आई एम वरी अबाउट हिम, मेरा कंपेनियन है।
3: हमारा गाड़ी भी प्रॉब्लम दे रहा है,

0: क्लच का प्रॉब्लम है, क्लच प्रॉपर काम नहीं कर रहा है और गाड़ी मतलब कि स्टार्ट भी नहीं हो रहा है इसकी वजह से। अगर गियर लगा के स्टार्ट ना करे तो गियर ना लगे।
1: तो गाड़ी बंद करके गियर लगाना पड़ता है और बंद करके वैसे ही गियर में सलप मारना पड़ता है तो गाड़ी वैसे ही चल पड़ती है, क्लच बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो इधर ना मैकेनिक है, फ़ोन में सिग्नल भी नहीं है, मैकेनिक तो इधर आते नहीं है गाड़ी का काम करने, ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम है।
2: क्लच नहीं जी काम कर रहा है, ट्राई कर रहे हैं देखिए।
1: गियर लग नहीं रहे, एक बाजू में भी दर्द हो चुका है, अभी शरीर में ऐसा ये क्लच वाला पाँव है इसमें भी दर्द हो चुका है।

और जहाँ पे गाड़ी नहीं चढ़ती है तो वहाँ पे उसको एक स्टोन लगा के धीरे धीरे मूव करना पड़ता है, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। एक तो वो गाड़ी जब हाइट पे चढ़ रही होती है, नहीं चढ़ पाती है, अकेला ड्राइवर है, अगर वो ब्रेक मारता है, ब्रेक पे भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं, पीछे को डाउन होती है, बैक में ब्रेक कम लगती है। जब गाड़ी रोड से बाहर निकलेगी खाली गाड़ी और इतनी हाइट से रोल करते हुए जाएगी, तो हमने बहुत सी मौतें इस रोड पर देखी हुई है।

जैसे भी हमने इस गाड़ी को मैनेज करके, क्योंकि ना मैकेनिक है ना कुछ है, हम लोग दोनों लगे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ये तभी पॉसिबिलिटी है कि हम दोनों का आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन है।

0: अब यहाँ से ले लगभग 40 किलोमीटर रह गया है। मैं और माही ने हमने मनाली से जर्नी स्टार्ट की थी और नॉन स्टॉप 450 किलोमीटर मनाली से ले है। दो दिन में इस जर्नी को कंप्लीट कर लिया।
1: बहुत अच्छा है, हमारी गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, रास्ते में रुक जाती गाड़ी शायद अगर हम थोड़ा सा भी मतलब कि हौसला ना करते कि गाड़ी पहुँचाने का।
2: अभी माही को वो अपने गंतव्य स्थान पे जहाँ पे उसने पहुँचना है, जहाँ पे उसकी गाड़ी अनलोड होनी है,

0: और सुबह जो है ना अनलोडिंग यहाँ पे आगे जो पेट्रोल पंप है करना।
1: चलो यहाँ पहुँच गए।
0: हाँ यही है, बड़ी बात है। चल ठीक है फिर, रखियो ध्यान में, ले मैं खाली करूँगा, तू यहाँ खाली कर। ठीक है फिर, बाय।

अभी अंधेरा होने को आ रहा है। पूरी वैली जो है उसको लद्दाख बोलते हैं। कैपिटल जो इसका है वो लेह है। लेह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। सारी मुश्किलों से पार पाते हुए फाइनली लेह में तो पहुंच गए। अभी ये जो गाड़ी है कहीं दूसरी जगह जाएगी अनलोड करने के लिए। वहाँ पे रोड अभी ठीक नहीं है। अभी 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। अनलोडिंग का अभी पूरा अच्छे से मालूम नहीं है। अभी सबसे पहले तो एक ही चीज़ है कि अभी फ़िलहाल अपना आराम से सोने का है। उसके बाद ही बाद में देखते हैं कि क्या करना है।

0: मेरे लद्दाखी फ्रेंड्स हैं, जब भी गाड़ी लेके हम ले आते हैं तो थोड़ा सा अनलोडिंग के लिए समय मिल जाता है, तो उस समय में मैं उनसे मिलता हूँ।
1: हाँ हाँ भाई,
0: 3 साल हो गए यार।
1: और क्या वाला है, कैसे आया हूँ इतना लंबे दिन के बाद?
0: बहुत मुश्किल से आया है यार।
1: हाँ,
0: इतनी प्रॉब्लम हो गई नीचे, तेरे को पता ही है सब कुछ।
1: हाँ, वो सब तो सुना था।
0: बाढ़ आ गई। यसो को मैं ईयर 2000 से जानता हूँ। उस दौरान जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे वो उनके साथ वो पढ़ा, जो मेरे पुराने फ्रेंड्स थे उनके सर्कल में था, उस तरह से वो हम लोग आपस में मिले।
1: वहाँ बारिश ज्यादा हो गया इस साल, यहाँ यहाँ इतना नहीं हुआ।
0: यहाँ पे कैसा है इस बार?
1: हाँ, इतना नहीं है, थोड़ा ठीक ही रहा था।
0: ऐसा क्यों हो रहा है ये?
1: तो यहाँ पर ये है ना कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर जगह पर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। अभी थोड़ा चेंज होने के बाद बर्फ कम गिर रहा है, अभी बारिश ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए इशू ज्यादा है। क्योंकि बर्फ नहीं गिर रहा है तो ग्लेशियर नहीं बन रहा है। जो गांव में ग्लेशियर कम है उसमें पानी बहुत दिक्कत रहा है। यहाँ कुछ कुछ गाँव में है कि कहीं पानी, पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं होता है स्टार्टिंग 2 मंथ्स के लिए।
0: ले में लोगों को प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं है पानी का। ले जो बना हुआ है, ले जो सिटी बनी हुई है, वो पुराने टाइम से उसी हिसाब से जितने कर लोग थे उसी हिसाब से बनी है। अभी क्या है, टूरिज्म की वजह से यहाँ पे क्राउड बढ़ रहा है और दिन ब दिन जो होता है पानी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है।
1: अच्छा यार, अभी क्या लेके आया तुमने लोग?
0: अभी बिटुमिन लोड है, अभी उनका थोड़ा सा वहाँ पे उनके भी हाथ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शायद 1-2 दिन में अनलोड हो जाएगी गाड़ी।
1: कैसे चलना है, इस गाड़ी के बाद आया हूँ।

0: This is really good.
1: This lassi shop has been standing for 64 years. A tribute to Lahori's thirst for the Punjab region's most beloved drink. Some of the locals here even refer to it as white beer.
2: What is lassi and what is it made of?
3: Yogurt,
4: milk,
3: sugar,
4: ice,
3: and that
4: together.
3: That's okay. Okay.
2: Why is lassi so popular here?
4: ये लाहौर शहर का कल्चर है कि नाश्ता जो मर्जी करे उससे पहले लस्सी पीनी है पार्टीशन से पहले इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन में पहले पीते आ रहे हैं
2: राइट
4: पंजाबी
2: राइट
4: इंडिया पाकिस्तान अंग्रेज दौर ब्रिटिश दौर
1: एंड द प्राइस फॉर गेटिंग दिस होस्टिंग जॉब वेल मेकिंग लस्सीज फॉर द क्रू सर्व्ड बाय योर्स ट्रू
2: चीयर्स